0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 9:30 a.m.
2: City FM 89.
3: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है. कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री. डेली अवेलेबिलिटी, नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days. आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर. AEO पाकिस्तान, पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर. Book now at www.aeo.com.pk.
4: City FM 89.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: MCB One Current Account, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB One करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89.
7: We're playing your song.
1: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day Sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
4: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ. अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में. बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ. आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर. शराइतो जवाबित लागू हैं.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Avail flat 30% and 50% off at the Diner's Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
4: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए AEO पाकिस्तान लाया है IELTS on Computer, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है कंफर्टेबल स्मूथ और स्ट्रेस फ्री डेली अवेलेबिलिटी नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days आज ही बुक करें अपना IELTS on Computer AEO पाकिस्तान पाकिस्तान्स मोस्ट ट्रस्टेड IELTS टेस्ट सेंटर Book now at www.aeo.com.pk.
5: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
6: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
7: That was Drake with Find Your Love. And up next here is Miguel and J. Cole with All I Want Is You.

0: 89.
1: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
2: शराइत ज़वाबित लागू है।
3: सिटी एफएम 89।
4: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड।
5: इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ओवरराइड फॉर योर इयर्स।
6: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
9: your evenings just got an upgrade.
7: The Rush Hour with ABD.
10: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
11: City FM 89. We're playing your song.
12: Special delivery coming through!
13: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
14: We're now live on WhatsApp.
15: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
14: It's as easy as 03142-898989.
13: Save our number now and WhatsApp us.
16: City FM 89.
14: You're listening to
17: Non-Stop Hits.

0: 89.
1: It's 10:30 p.m.
2: You're listening to City FM 89.
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
2: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
5: Non-Stop Hits.